0: चले। क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।
1: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

0: Laika Gold. The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
2: Dubai is the place. 11, 11.
1: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
3: Danu 11, 11. Danu Properties.
4: जो कल जन्मे हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा तथास्तु।
5: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जिन मीडिया 826 EE 396
6: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: Soca Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: Taza kare apni yaadein Leica Gold ke saath.

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच नाए।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी।

जिब तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहण जाए।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख।

देना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुक्ति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
1: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
2: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
3: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानो बंद करो।
1: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसलीप, पॉटर्सवार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153420। नाटक नु नाम याद रखजो।
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: Look, there's a snail, and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
6: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
5: Conditions apply. See online for details.
7: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag aadharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com व्हाटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
0: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: The Big Bank is loading and ready tomorrow.

0: Stay tuned.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: The Lyca Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम।
2: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरीना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
3: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
2: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
4: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
9: Search is changing.
10: Customers aren't just using Google anymore.
9: They're asking AI.
10: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
9: One business, one recommendation.
10: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
9: Will your business be the answer?
10: Or the one that got left behind?
9: The future of search has already started.
10: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
9: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
11: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
12: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
13: Hi, this is Arbaaz Khan. For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
14: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: Visit travelhubworld.com.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर Your travel mantra.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक,
2: मल भर के लिए।
3: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज।
4: इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा।
3: गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट्स सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25। बुक टिकट्स एट herroartscenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161।
4: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: Dreaming of paradise?
6: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
5: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
6: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
5: Atoll protected.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line.
9: The Big Bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.

0: आर डी बर्मन का म्यूजिक और किशोर दा की आवाज, अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्ते पे सत्ता से था ये गाना, और उससे पहले अवतार फिल्म का गीत जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक, और आपने सुना आपके मनपसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन से एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज एक बार फिर से ऋतु शर्मा आपके साथ है, सेटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, मौसम में अब मीठी मीठी ठंडक आ चुकी है, कहते हैं ना जैसे गुलाबी ठंड, मौसम कुछ ऐसा हो गया है, और हो भी क्यों ना, सितंबर का महीना जो शुरू हो गया है। देखिए आज है 1 सितंबर, नया महीना की शुरुआत। आज मंडे होता तो हम ये कह सकते थे कि नए वीक की शुरुआत, लेकिन कोई बात नहीं, आज ट्यूजडे है, बजरंग बली का दिन है। आज के दिन की आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आपका दिन हर दिन की तरह अच्छा बीते। आपके मैसेजेस मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो बस जुड़े रहिए, 1 बजे तक हम और आप यही रहेंगे, और मैं आपको सुनवाती रहूंगी और आप मुझे सुनते रहेंगे अच्छे अच्छे गाने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 128.1 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको आज भी करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, you there? Here's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together,
8: it all adds up.
9: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
10: Ye hai Leica Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: शम्मी कपूर पर पिक्चराइज रफी साहब की आवाज में ये गाना तब भी सुपरहिट था और आज भी सुपरहिट है। जानवर फिल्म से था ये गाना और ऐसे ही गाने आप सुनते हैं हमारे यहाँ से, क्योंकि ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में ऋतु शर्मा आज भी आपका साथ दे रही है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और समय हो जाता है आज के ताजा समाचारों को सुनने का।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आपके मुझे ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिन पर मेरी नजर जरूर जाएगी, लेकिन फिलहाल सुनवाते हैं आपको आज की ताजा खबरें।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर भारत से। करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही यानी कि क्वार्टर वन में इंडिया ने 7.8% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज का नतीजा बताया है। बिश्केक यानी कि किर्गिस्तान में चल रहे 26th शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है और यहां उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बायलैटरल और रीजनल इश्यूज पर डिस्कशन किए हैं। आपको बताते हैं कि कमर्शियल LPG सिलेंडर्स के रेट में आज से नए रिविजन्स लागू हो गए हैं भारतवासियों के लिए, ये एक खबर है। और उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को अब इमिग्रेशन काउंटर्स पर फिजिकल बोर्डिंग पास की स्टैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल पासेस पूरी तरह से वैलिड रहेंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों के लिए जो भारत जाते आते रहते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि बिहार के जहनाबाद में नदियों का वाटर लेवल बढ़ने से फ्लड अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में हैवी रेन की वजह से चित्रकूट के रामघाट समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। विदेशों से कुछ खबरें सुनाते हैं। सबसे पहले नेपाल से कि नेपाल की जो फ्लड की जो प्रॉब्लम हुई थी जिसमें अब तक 3,900 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं और इनमें 600 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। माना जा रहा है कि ये त्रिशूली नदी के किनारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाओं में बनी मिट्टी की भरी सुरंगों में फंसे हुए लोग हैं। इंजीनियर्स इन सुरंगों के अंदर हवा पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक टीम ने इनमें से एक सुरंग के अंदर जाने में भी कामयाबी हासिल की है, लेकिन वहां किसी को ना पाकर उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह ने कहा कि इन परियोजना स्थलों से लगभग 279 यानी कि 279 लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी बचाव अभियान जारी है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा बचाई जा सके उतना ही अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित SCO की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को धन मुहैया कराने और आतंकवादियों को भर्ती करने, उन्हें रेडिकलाइजेशन और उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने से पूरे जो इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त करना होगा, इसका जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक स्वर में बोलना होगा कि इस आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने दुनिया में चल रहे संघर्षों के बारे में भी कहा, सभी तनावों और युद्धों का समाधान युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि संवाद और डिप्लोमेसी से ही संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए SCO का मतलब है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। उधर US एयरफोर्स ने ईरान के लारक आइलैंड पर स्थित आईआरजीसी रॉकेट लॉन्चर्स पर एयर स्ट्राइक्स की है। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में स्थित यूएस मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, जिन्हें यूएस एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया है। यूएस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि यूएस नेवी की सिक्योरिटी गाइडेंस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना लगभग 30 ऑयल टैंकर सेफली पास हो रहे हैं, जिससे ग्लोबल क्रूड ऑयल की सप्लाई पर बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में मतभेदों की वजह से यूएस आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है Like a Gold, Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: क्या खूबसूरत गाने हैं, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको सुनकर हम उनमें खो जाते हैं, और ये गाना भी कुछ ऐसा ही, और उस पर आवाज किशोरदा और लता मंगेशकर की कमाल है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. ये है Leica Gold.
0: जी हाँ बिल्कुल, आप अपना मनपसंद रेडियो ही सुन रहे हैं और हमारे ढेरों मैसेजेस भिजवाए हैं हमारे साथियों ने। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर कुछ देख रही थी तो मुझे एक बहुत ही अच्छी सी बात सामने दिखाई दी और मुझे लगा कि बहुत ही सही सोच कर लिखा है किसी ने कि जो मदद होती है, मदद जिसे कहते हैं सहायता, एक ऐसी घटना होती है जिसे करो तो लोग अक्सर भूल जाते हैं और अगर ना करो तो लोगों को हमेशा ये बात याद रहती है। और कहते हैं ना कि आप किसी के साथ 100 बातें अच्छी कर दीजिए वो भूल जाएगा, लेकिन अगर आपने कहीं किसी एक चीज़ के लिए ना कह दिया या कोई एक चीज़ ऐसी कर दी जो उसको पसंद नहीं आई, वो उस चीज़ को जीवन भर याद रखता है। ऐसा मेरे

0: यस, नए महीने की बधाइयां आप सबको, और उम्मीद है कि ये नया महीना आप सबके जीवन में और भी खुशियां लेकर आएगा। तृप्ति, आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू नरेंद्र बागिया जी। आप M1 मोटरवे पर मिल्टन कीन्स जा रहे हैं, मोटरवे पर है और हमारा साथ भी दे रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है। बिल्कुल, अगला गीत आपको डेडिकेट करते हैं। फारूक मोहम्मद जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जयंत एंड मीना जी, थैंक यू, हैप्पी ट्यूसडे। अनिल सोनी जी हमारे साथ है वियाना से, और भारत से यानी कि इंदौर से गिरीश जी साथ जुड़ चुके हैं, पूछ रहे हैं मैं कैसी हूँ। बिल्कुल कल जैसी, बहुत अच्छी, थैंक यू। उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। शेखर राणा जी, थैंक यू, प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं। मृदु जी हमारे साथ हैं, मिसेस शेख हैं, तोची जी हैं, और चंदू शाह का मैसेज आया है, कहते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स फॉर देयर काइंड विशेज ऑन माई बर्थडे टूडे। ओहो, आज आपका बर्थडे है, चलिए हमारी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे। एंड ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी यस्टरडे, तो कल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, क्या बात है, बैक टू बैक दो बड़े सेलिब्रेशंस। चलिए एनिवर्सरी की बिलेटेड और हैप्पी बर्थडे की आज की आपको बहुत बहुत बधाइयां। और अगला गाना चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि अगर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो दुबई चले जाइए, क्योंकि साउथ ऑल ट्रेवल के पास बहुत अच्छी डील्स है दुबई के लिए। उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड। Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, you there? Here's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
8: Ye hai Leica Gold.
9: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
10: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
11: TravelHub, best service with unbeatable price.
12: At all protected.
13: Visit TravelHubWorld.com.

0: जैसे
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रो।
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम।
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरीना वेम्बली ऑन द 27th of September।
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
6: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स।

0: सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाजों में था ये गाना, जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन से। और अनिल सोनी जी वियाना में कहते हैं कि ऋतु मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, नेवर ने गाड़ी मांगी, साइकिल मांगी चलाने के लिए, 30 दिन तक दे दी तो खुश रहा, और एक जब लाखरे दिन कह दिया कि आज खराब हो गई है तो बुरा मान गया। होता है, हम सब के साथ ऐसा हुआ है। जासू जी कहती है मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये जीवन है, ऐसे ही लोग हैं आजकल ज्यादा। कुछ और बातें बताऊंगी लेकिन फिलहाल,
1: दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 376 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 105.20 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
6: The wait is finally over.
7: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
6: Mirzapur is coming to the big screen.
8: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
6: Power, revenge और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
9: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
6: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। जस्ट 3 days टू गो। मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज September 4th।
8: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
10: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
11: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
10: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी दी जर्नी ऑफ राम।
11: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th of September।
12: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
11: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉट।
13: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
14: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

0: Satco, Microwave.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: सितंबर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
3: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो।
4: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो ने खोटा ओगवानू बंद करो।
2: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो,
5: हालो पटेल भाई जान मा।
6: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes. Join Leica Radio Live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu, from the house of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that transforms your life. Free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes. Don't miss it.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
11: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
12: Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold.

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज शो में एक बार फिर से मैं ऋतु शर्मा आपके साथ हूँ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। 11:04 हुए हैं और ये समय निर्धारित है चिंतन के लिए। चिंतन यानी कि आज का विचार। और आज के चिंतन को शुरू करने से पहले आपके साथ चार लाइनें जरूर शेयर करूंगी कि चमक धमक के मेले में सब नकली मुस्कान लिए हैं, भीतर गहरे दर्द छुपाए चेहरे पर अरमान लिए हैं, दूसरों का रोशन आंगन देख क्यों अपना दीप बुझाना, जो मिला तुम्हें इस जीवन में वही तुम्हारा असली खजाना, नकाब ओढ़ कर जीने से तो सादा जीवन बेहतर है, सच्ची खुशी तो भीतर है, बाकी सब तो बस दिखावा है। और यही मैसेज है हमारे आज के चिंतन में। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर था और उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था कि 20 रुपए में आप जैसे हैं वैसी फोटो खिंचवाइए, 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी फोटो खिंचवाएं, और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी फोटो खिंचवाइए, और बस लोग आते रहे, फोटो खींचता रहा। और कई सालों बाद जब वो बूढ़ा हो गया फोटोग्राफर और उसने अपनी बायोग्राफी लिखी, तो उसमें उसने लिखा कि मैं जीवन भर अनगिनत लोगों की फोटो खींचता रहा, लेकिन इस दौरान एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको 20 रुपए वाली फोटो खिंचवानी थी, यानी कि वो जैसा था उसको वैसी फोटो खिंचवानी थी। हर किसी को 50 रुपए वाली ही फोटो खिंचवानी थी। और यही हकीकत है आज हमारे समाज की, आज के समय की। दिखावे के रिश्ते, दिखावे की हंसी, दिखावे की अमीरी, और बहुत बार दूसरों की उस नकली 50 रुपए वाली जिंदगी के आगे हमें अपनी असली 20 रुपए वाली जिंदगी बहुत सस्ती लगने लग जाती है। इतनी सस्ती कि हम जो हमारे पास है उसका आनंद ही लेना भूल जाते हैं, हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं, हम खुश रहना भूल जाते हैं। जो चीज हमारे पास है ना, उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद करना भूल जाते हैं, और जो दूसरों के पास दिखाई दे रहा होता है और हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, बस उसके लिए खुद को, अपने परिवार वालों को और ऊपर वाले को कोसना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार अगर किसी का कुछ देखकर आपके मन में ये ख्याल आए कि वाह उसकी क्या जिंदगी है, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो एक बात याद रखिए कि कई बार फोटो असल में 20 रुपए वाली होती है, लेकिन हमें दिखती 50 रुपए वाली है। और उस ईश्वर वाले ने हमें, उस ऊपर वाले ने हमें इतना सब कुछ दिया है ना, हम दूसरों को देखकर भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने हमें ऐसी बहुत सारी चीजें दी हैं जो अनमोल है, और अगर उनमें से ऊपर वाला एक भी चीज हमसे ले लेना
तब हमें एहसास होगा कि हमारे पास तो बहुत कुछ था। हम यही सोचते रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना, जिसमें आनंद बख्शी ने जीवन की कड़वी सच्चाई और ग्रैटिट्यूड के महत्व को बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस म्यूजिक को बनाया है, और इस गाने को हमने आज चिंतन के साथ जोड़कर आपको सुनवाया। और आज के चिंतन का मैसेज यही है कि आजकल की सोशल मीडिया वाली दिखावे की दुनिया जो है, उसमें हम अक्सर ही दूसरों की नकली 50 रुपए वाली जिंदगी को देखकर अपनी वास्तविक 20 रुपए वाली जिंदगी की कद्र करना भूल जाते हैं। आजकल लोग असलियत से ज्यादा अपनी एक परफेक्ट छवि लोगों को दिखाने में बिलीव रखते हैं, और अक्सर ही दूसरों की चमक धमक देखकर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी है ना, उसकी खुशी की बजाय हमारे पास जो नहीं है हम उसके लिए दुख मनाकर बैठ जाते हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद कहने की बजाय हम उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो जीवन हमारे पास है उसमें खुश रहना और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना ही सही बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी शांति से जीवन जी पाएंगे। और यही मैसेज था आज के चिंतन का, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद भी किया है। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चिंतन आप सुन नहीं पाए, कोई बात नहीं, अगर आप चिंतन नहीं सुन पाए हैं और दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लिसन बैक पर जाकर इस प्रोग्राम को, इस चिंतन को दोबारा भी सुन सकते हैं। इमीडिएटली नहीं, आफ्टर 3-4 आवर्स आप सुन पाएंगे। देसराज बसन जी, थैंक यू, आपका मैसेज मिला है आज बड़े दिनों बाद, आपने मैसेज भेजा है और काफ़ी लंबा है, जिसे ज़रूर पढ़ूंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन जैस्मिन जी, बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा रानी छावड़ा जी, हमारे उल्लास जी, जगदीश जी बुशी से, राजेश जी, अनिल सोने जी वियाना से, विजय गुडूरी जी, ललित छत्रीसा जी, हरविंदर जी एंड हमारे बिजी गुनोवा जी, थैंक यू। सभी ने चिंतन को पसंद किया, और उसके अलावा मैसेजेस बहुत सारे हैं जिन्हें मैं फर्स्ट आवर में नहीं पढ़ पाई थी, तो कोशिश करूंगी कि ज़रूर आपके मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। लेकिन फिलहाल तो समय है चिंतन से बाहर निकलकर आपको मस्ती भरे गीत सुनवाने का, तो बस सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गाना, और इस गाने में आवाज़ है आशा भोसले की।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: पर उस गाने को बजाने से पहले आपको बता दें कि आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 28.1 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना है वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम।
3: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सेप्टेम्बर।
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
3: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉट। एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आवर रेडियो नेटवर्क।
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties.
10: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
11: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
12: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
11: ये तो बताओ कोई पता चला?
12: गुरु गुरु,
13: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
12: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
13: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
11: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
14: शीघ्र शीघ्र।
13: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
15: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
17: Okay.

0: सदा। जी हाँ जी, बड़े दिनों बाद कहूँ या महीनों बाद इस गाने को प्रोग्राम में जगह मिली है और ये गाना मैं डेडिकेट कर देती हूँ हमारे विजय कुटूरी जी के नाम पर, महेंद्र बजारिया जी के नाम पर, अहीर घनोवा जी आपके नाम पर और हमारे जितने भी साथी देवानंद के फैन हैं उन सभी के नाम पर जाता है ये गाना। और इसके अलावा आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए, लेकिन पहले मैसेज पढ़ूंगी, एक डेडिकेशन है और ये भेजा है मधु जी आपने। कहती हैं कि मेरी डियरेस्ट ग्रैंड डॉटर की आज स्वीट 16th बर्थडे है, जिनका नाम है सैफी रे, आई थिंक मैंने नाम सही बोला है, और आप चाहती हैं कि उन्हें दादी मधु गडेचा और पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी दुआएँ ब्लेसिंग्स भिजवा रहे हैं आप सब और कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे। और आपने एक गाना भी रिक्वेस्ट किया है, तो गाना तो मैं पता नहीं वो लगा पाऊंगी या नहीं, लेकिन हाँ जो अगला गीत है 90s का गाना है ज़रूर सैफी रे आपके नाम पर करते हैं। और आपके साथ साथ आज जो भी अपनी हैप्पी वाली बर्थडे मना रहे हैं उन सभी के लिए अगला गीत
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आप भी ऐसा करते हैं, खत कलम उठाकर लिखते हैं और हाले दिल तमाम किसी को बताते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आज आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे है। जी हाँ, सही सुना आपने।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो सही सुना आपने कि आज के इस डिजिटल दौर में हाथ से लेटर लिखने की आदत को बढ़ावा देने के लिए और इसकी पुरानी यादों को सेलिब्रेट करने के लिए आज दुनिया भर में विश्व पत्र लेखन दिवस या कहूँ वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे मनाया जा रहा है। तो आप चाहें तो आज किसी को लेटर लिख सकते हैं, अगर कोई ख़ास है आपकी लाइफ में। वैसे एक बात बता दूँ, लेटर जब मिलता है ना तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है और आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में किसके पास समय है कि लेटर लिखे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे पोस्ट करे, फिर लंबा इंतज़ार करे। आजकल सब क्विक क्विक फटाफट हो गया है, लेकिन फिर भी लेटर का मज़ा अलग ही है। और देखिए, लेटर से पहले कबूतर से चिट्ठी भिजवाया करते थे, बहुत सारे पुराने तरीके होते थे, लेकिन कभी उनके बारे में जब बात करते हैं तो अच्छा लगता है था कि कैसा ज़माना था। उस ज़माने में भी सारे के सारे काम होते थे।

0: साथ शेयर करूं, लेकिन समय ही तो नहीं होता है, तो बस बातें कट करनी पड़ती है, और फिर मैं कट कर रही हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। रोहित, आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा और थैंक यू साथ देने के लिए। भावना जी कहती हैं, रितु आप कभी भी मेरे नाम पर कोई गाना नहीं करती हो। भावना जी, चलिए आपने अब ऐसा कहा ही है तो अगला गाना मेरी ओर से बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये गाना सिर्फ भावना जी सुनेंगी, कोई और नहीं। बजाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस, और इसे होस्ट किया है राजपथन एंड खुश ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं Spotify पर, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
6: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम।
8: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
8: Book now on diwalistory.com before they are gone.
10: Exclusive TV partner Star Plus and exclusive radio partner Leica Radio Network.
11: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
12: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
11: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
12: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 0192-322-7274। बुक योर टेबल टुडे।
13: One performer,
14: countless personalities,
13: a whole universe of entertainment.
14: Sunil Grover, live UK tour 2026.
13: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
14: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
13: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
14: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
13: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
15: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
16: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
17: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
16: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
18: Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
19: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
18: Rich, authentic taste every single time.
19: Royal Chai, brewed for business.
18: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
20: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from

0: बिल्कुल ससुराल फिल्म से था ये गाना और ये एक अवार्ड विनिंग गाना था। इस गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और ये गाना हमने भावना जी के साथ साथ हमारी जितनी भी प्यारी लिसनर्स हैं सुन रही हैं सबको डेडिकेट किया। और आप में से बहुत सारे साथियों का कहना है कि पुराना ज़माना ज़्यादा अच्छा था। हमारे विजय जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फिर से 70s और 80s का ज़माना लौट आए। भावना जी कहती हैं कि यस, लोगों को लेटर लिखना अच्छा लगता था लेकिन आजकल तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। लोगों को फोटो खींचना भी अच्छा लगता था। यू नो, बहुत सारी चीज़ें थी, आजकल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और जैसा चिंतन में था ना, आजकल बहुत सारी नकल चीज़ें भी आ गई हैं और फोटो देखकर तो आप बता नहीं सकते कि ये असल है या नकल जब तक सामने से ना देखे। एनीवेज, आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। थैंक यू रोहित, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया ना? पढ़ चुकी हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और मैसेजेस पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन समय नहीं है क्योंकि मुझे एक और गाना बजाना है। तो नेक्स्ट वाले आवर में आपके मैसेजेस का सिलसिला कंटिन्यू बिल्कुल रहेगा जी, कंटिन्यू रहेगा। आप हमारा साथ दे रहे हैं ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बताती चलूँ कि मैं हूँ ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और एक बजे तक और इस फ्राइडे तक मैं आपके साथ रहूंगी।
1: मैं हूँ निशा नासिर, लाइक अ गुड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।
2: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £105.20 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.

0: बप्पीदा का कमाल का म्यूजिक और उस पर किशोर कुमार की आवाज। ये गीत आपने सुना और उससे पहले कारवां फिल्म का गीत सुनवाया लता जी और रफी साहब की आवाज में। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है। और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है आपका इस शो में। मैं हूं ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि जी, और आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं और एक डेडिकेशन आया है जिसे ज़रूर शेयर करूंगी प्रोग्राम में। और ये भेजा है मीना जी ने। मीना जी ने लिखा है कि हाय ऋतु, गुड मॉर्निंग, इंजॉइंग लाइक अ गोल्ड दिस मॉर्निंग विद यू। आप हमारे साथ हैं, थैंक यू। और आपने ये भी बताया है कि आज जयंत जी का बर्थडे है, तो आप चाहती हैं कि, आपने लिखा है कि प्लीज़ विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी, आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑफ कोर्स लाइक अ गोल्ड। और आप ये भी चाहती हैं कि कोई अच्छा सा गाना मैं अपनी चॉइस का जयंत जी के नाम पर करूं। बिल्कुल, मीना जी की ओर से जयंत जी को जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां। आप हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं, मेरी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे। और अगला जो गाना है, जो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत है, जो है माला सिन्हा, वो गाना जयंत जी हम आपको डेडिकेट करते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.1 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai like a gold.
3: Like a gold.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
6: अपना बनाया तेनू,
5: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फट।
7: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
11: The wait is finally over.
12: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
11: Mirzapur is coming to the big screen.
13: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
11: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
14: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
11: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, releasing in cinemas 4th September.
15: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम।
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
6: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: माला सिन्हा की फिल्म अनपढ़ से लिया था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था मदन मोहन का, और माला सिन्हा ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Ar bhang ka rang jama ho chaka chak phir lo paan chaba aa. आहा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: भाई बनारस के पान ने और बनारसी साड़ियों ने बनारस को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया है। वैसे तो बनारस बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक जगह है और मेरी लिस्ट में है। मैंने आज तक कभी भी बनारस नहीं गई हूँ और मुझे वहाँ जाना है, लेकिन इस गाने ने, बनारसी पान ने और बनारसी साड़ी ने कमाल की पॉपुलैरिटी दी है बनारस को। और आप सबने इस गाने को पसंद किया है, सो थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को। सुबह से लेकर अब तक आपने ढेरों मैसेजेस मुझे भिजवाए हैं जिन्हें मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ, लेकिन चलिए अब कुछ मैसेजेस आपके शामिल करते हैं।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: तो हिमांशु पटेल जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, काफ़ी लंबा है। मैंने पढ़ा है कि उसमें बहुत, क्या कहूँ, मैं पढ़ नहीं सकती, बहुत टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, लेकिन मुझे बहुत हंसी आई। थैंक यू कहना चाहती हूँ प्रतिभा जी को, जो कह रही हैं कि मैं मैसेज नहीं भेज पा रही हूँ लगातार। मैं खाना बना रही हूँ, पाव भाजी और राजमा चावल आप बना रही हैं, और कहती हैं कि मुझे गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, तो बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाइए, क्योंकि अच्छे गीतों के साथ जब खाना बनाते हैं ना तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। इसके अलावा भावना जी, नहीं ये कौन है हमारी लिसनर है जिनका नाम क्या है कहाँ है, हर मैसेज के साथ अपना नाम ज़रूर लिखा कीजिए। उषा जी हैं, कहती हैं कि जब आपने वो गाना लगाया ना, जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, ये गाना आपको 90s की याद दिलाता है, जब आपकी शादी हुई थी या आपका, मैं मतलब जो भी था, आपको याद आ गई अपने पुराने ज़माने की। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। इसके अलावा भारती दीदी हमारे साथ हैं, थैंक यू। दिनेश पोपट जी, विभाकर जी स्टैंड मोर से कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि आप हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, फ्राइडे तक रवि शर्मा जी के शो में मैं ऋतु शर्मा ही आपका साथ दूंगी। सो थैंक यू देसराज बसन जी, बहुत दिनों बाद आज आपका मैसेज आया है और आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर की है, थैंक यू। जैस्मीन जी, ये है हमारी रानी जी, रानी चड्ढा, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। बुशी से जगदीश जी, आपने मैसेज भिजवाया है, थैंक यू। हरविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मितुल पटेल जी कहते हैं कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा था, खुली वादियों में अकेले ना जाना, चलिए समझ लीजिए वो गाना हमने आपके लिए किया, आपको डेडिकेट किया। और फरीदा गुलाम अली जी, आपका मैसेज आया था, अरुणा जी, मीनाक्षी जी, थैंक यू। शोभना राय जी, इमरान जी, बहुत सारे महबूजा, थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। परिमल भाई मेहता ऑरलैंडो USA में आप साथ दे रहे हैं, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। और चलिए अगला जो गाना है जिसे मैंने लिया है मधुमती से, जो 1958 की फिल्म है, आप सबको डेडिकेट करते हैं। लेकिन उससे पहले याद दिलाते चलें एक बार फिर से कि अगर आप ने अभी तक टिकट नहीं खरीदा है दिवाली स्टोरी का, तो फटाफट टिकट्स खरीदिए, आपको ये मिलेंगे diwalistory.com पर जाकर। ये एक स्टेज शो है जो होने जा रहा है ओवो अरीना में, वैमली में, ऑन संडे 27 सितंबर को।
4: ये है
5: Like a Gold।
4: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: जी हाँ, लता जी की आवाज़ में मधुमती फिल्म का था ये गाना। और नरेंद्र पांचाल जी सही कह रहे हैं कि क्या ढोलक बजी है इस गाने में, कमाल का गीत है। सलिल चौधरी ने म्यूज़िक सजाया है और शैलेंद्र ने सारे गीतों को लिखा है। और विजय जी हमारे कहते हैं कि बनारस ऋतु ज़रूर जाना, जब भी मौका लगे मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो मुझे देखने जाना है वो पुरानी सिटी जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है, बहुत सारी चीज़ों में है, तो वो देखने लायक जगह है, ज़रूर जाऊंगी। और मैंने शायद बनारस में ही होती है गंगा आरती, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं उस तरफ कभी गई नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द शायद देखिए मौका लगा तो मैं जाऊँगी देखने के लिए। आप वहाँ गए हैं और आप कह रहे हैं कि यस जाने लायक जगह है, बिल्कुल ज़रूर जाया जाएगा। थैंक यू साथ देने के लिए। और एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप हॉलिडे जाने के लिए अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं साउथ होल ट्रैवल से ऑन 02085748410 पर। दुबई के लिए अच्छी डील्स चल रही हैं और उन्हें फ़ोन कीजिए, साउथ होल ट्रैवल इज इट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Here's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together,
8: it all adds up.
9: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
10: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
11: TravelHub, best service. With unbeatable price.
10: At all protected.
11: Visit TravelHubWorld.com.
12: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम.
13: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
14: Exclusive TV partner, Star Plus, and exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: Have you noticed the way fans shout at football matches?
16: Oh, wake up!
15: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Wow. What two lovely songs that were adapted from Come September. Are, I better not get carried away here. But happy September to you. और बहुत बातें नहीं करूँगा, पहली तारीख है तो पहली तारीख का गाना इसके बाद ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल गए सबको, पहली तारीख पर रखता हूँ, सुनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो। मैं हूँ बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1033 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com, एंड इट्स द 420th डे। 420 नहीं कर रहा हूं, पर 420 दिन हो गए हैं 420th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स, एंड 4 बजे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पे आएंगे राज बदन आफ्टर अ लवली लॉन्ग वीकेंड, पूरी तैयारी करके। And Laika Radio Midlands was set up on 1st of July 2025. And don't forget, on DAB from today, it's going to be all over Birmingham and other areas surrounding Wolverhampton, Walsall, sab jagah pe you will be able to hear Laika Gold and Laika Radio. Yes. और आज क्या क्या होने वाला है, वेल सेकेंड आवर में हम राज कमल जी को याद करेंगे। राज कमल जी के जो कॉम्पोजिशंस हैं, ओ माय गॉड, इतना मज़ा आने वाला है। बी इन अ क्लासिकल मूड, सेमी क्लासिकल मूड, या यू कैन से यसुदास मूड, ये तैयारी रखना। मैं हूं बाली ब्रह्मभट, सुनते रहिएगा, जुड़े रहिएगा और मैसेजेस भेजते रहिएगा प्यारे प्यारे, टू कीप मी inspired.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: The wait is finally over.
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
4: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
7: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ Mirzapur।
4: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। जस्ट 3 डेज टू गो। Mirzapur द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज सितंबर 4th।
6: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
10: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
9: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी दी जर्नी ऑफ राम।
10: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
11: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
10: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉट।
12: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
5: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 02087677627
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English but louder.
7: Four beers, please, garçon.
6: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: Like a goal. London ka number one Asian retro music station ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe feel good track brought to you by Dairy Valley
0: soft and tender like grandma's warm hug Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives visit dairyvalley.net

शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना, करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना।

हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: है जी, खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

0: प्यार तुमसे
1: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
2: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
1: वो था गाना फिल्म भीगी रात का, 1965 की फिल्म जो रफ़ी साहब ने इतनी बाखूबी से गाया, रोशन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी। अब भीगी भीगी रातों में किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

फिल्म है अजनबी और अजनबी वाला गाना सुनिए। वो थी फिल्म अजनबी, ये लता मंगेशकर गा रही है अजनबी।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
0: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. खूबसूरत beaches, sunshine और 8 amazing Caribbean islands आपका इंतजार कर रहे हैं. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited है तो आज ही book कीजिए. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
2: जो कल जन्म हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा. तथास्तु.
3: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जिन मीडिया 826 EE396.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम.
6: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
7: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है.
6: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉट.
8: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
11: Hi, this is Arbaaz Khan.
12: For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
13: The Big Bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
4: अपना बनाया तेनू
3: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 0793913726। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 High Road, Ilford.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
5: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
6: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive TV partner, Star Plus, and exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Calling all samosa lovers! Leica Radio and Ashoka Samosa celebrating World Samosa Day in style. Listen from Monday and all week for your chance to win a £50 Amazon gift voucher. Keep listening, get ready to enter and celebrate World Samosa Day with Ashoka Samosa and Leica Radio.
8: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: वाह क्या गाना है ना। और फिल्म थी अभिलाषा। अभिलाषा में दो हीरोइन जैसे कि मीना कुमारी और नंदा, एंड हीरो थे संजय खान। व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी 1968 आई थिंक, एंड म्यूजिक बाय आर डी बर्मन। इसमें जो सैक्सोफोन का जो पीस बजा है वो हमारे पॉपुलर मनोरिदा, मनोरिदा द ग्रेटेस्ट हु हैज प्लेड सो मैनी सॉन्ग्स। लेकिन देखा जाए तो जब मैंने इंक्वायरी की के सबसे बेस्ट सैक्सोफोन प्लेयर इंडिया में कौन, तो द लेजेंडरी कादरी गोपालनाथ। कादरी गोपालनाथ वाइडली सेलिब्रेटेड एज द अल्टीमेट पायनियर एंड फाइनेस्ट क्लासिकल सैक्सोफोन प्लेयर इन इंडिया। सो यू कैन से द अल्टीमेट पायनियर एंड फाइनेस्ट क्लासिकल सैक्सोफोन प्लेयर, लेकिन द मोस्ट वेल नोन सैक्सोफोन प्लेयर ऑफ इंडिया happens to be none other than हमारे प्यारे मनोहरीदा। एंड इफ यू लुक एट द इंग्लिश वर्ल्ड, द वेस्टर्न वर्ल्ड, वहाँ पे तो द लेजेंडरी कैनी जी, द स्मूथ जैज आर्टिस्ट, सोल्ड ओवर 75 million रिकॉर्ड्स ग्लोबली एंड सो पॉपुलर, एंड फिगर्स लाइक जॉन कॉल्ट्रेन एंड चार्ली पार्कर widely considered the most famous and influential in jazz history. Lekin world famous Kenny G, unki jo style thi play karne ki, he would do a circular breathing motion, matlab pata nahi chalta kahan pe saans le rahe hain saxophone bajate bajate, and he had this beautiful technique by which he played and would play long notes. World famous Kenny G. अरे मैं कहाँ कैरिड अवे हो गया। मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव ऑन DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड लाइका गोल्ड .com। और DAB की बात चलती है तो बर्मिंगम वालों, यू कैन गेट लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो ऑन योर DAB फ्रॉम टुडे। And it's the 420th day of Leica Radio Midlands, which started on 1st of July 2025. This is week number 36 and 244th day of 2026, 121 days left. And Sandy Shah will be coming at 4 o'clock. That's in about 40 minutes time, 43 minutes time. I know aap intezaar kar rahe hain, main usko bata dunga. And Raj Patanji is back on after a long weekend break, and that is gonna be on Leica Radio Midlands from 4 to 7. Drive time pe enjoy kijiyega. Hamare artist is yes Mala Sinha, aur kal maine unka naam jo bataya to log bolte kya baat kar rahe ho, Alda Sinha. She was born with the name Alda Sinha. And rest of the story is history. Anyway, आगे बढ़ते हैं और गाने सुनते जाइए, लुत्फ उठाते जाइए. Thank you for lovely, what do you say, month of September. And thank you for your lovely messages as well.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in sterling, British sterling pound, is going to get you up to, let's see, the latest currency now. The rate is 128.1. 128.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNC supply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Time's flying by. So this autumn, let's slow things down. Let's savour the moment. It's the perfect time to discover a new autumn favourite. Because the Maple Hazel range has returned to Costa Coffee, transforming your favourite coffee into a true taste of autumn. Celebrate the season and embrace your autumn glow with the Maple Hazel range. Pick up one today from your nearest Costa Coffee store while stocks last. Costa Coffee, made with heart.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
6: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11, 11.
7: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties.
10: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
11: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
10: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
11: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
12: London, Jazz Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Amantrika. Or soulful singer Mayuri Patalia live Harrow me. Saturday, 3rd October, 7 PM, Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
14: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
15: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
16: Southall Travel can take you there.
17: Southall Travel, at all protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
3: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
4: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra stream it now and be a part of the conversation

0: And that's your latest traffic and travel.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Time's flying by, so this autumn, let's slow things down. Let's savour the moment. It's the perfect time to discover a new autumn favourite. Because the Maple Hazel range has returned to Costa Coffee, transforming your favourite coffee into a true taste of autumn. Celebrate the season and embrace your autumn glow with the Maple Hazel range. Pick up one today from your nearest Costa Coffee store while stocks last. Costa Coffee, made with heart.
3: Ye hai Laika Gold, 10:35 a.m.
4: Bali Brumbat on Gold Afternoons. Laika Gold.
5: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
6: लाइक अ गोल्ड
7: गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रम्बर्ट प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया ब्रिंगिंग ऑथेंटिक फ्लेवर्स टू योर टेबल एवरी डे. फाइंड जेमिन एट एशियन स्टोर्स नियर यू.
8: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
9: पल भर के लिए
10: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161.
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Laika Radio Network.
12: Dreaming of paradise?
13: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
12: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
13: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
12: At all protected.

0: और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून, फिल द ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरी डे ग्रैंड।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
3: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
1: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
5: टू बुक ऑल 0208-514-5400, बुक online at Eventbrite.
6: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
8: Hi, this is Chitranjan Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
9: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए, बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा,
2: हाँ जी।
1: एक बच्चा देखा,
2: हाँ जी।
1: ना कोई आगे,
2: हाँ जी।
1: ना कोई पीछे,
2: हाँ जी।
1: मैं तरस में आके,
2: हाँ जी।
1: ले चला उठा के,
2: हाँ जी।
1: ये माँ को दे दूं,
2: हाँ जी।
1: मंदिर में रख दूं,
2: हाँ जी।
1: पंडे ने देखा,
2: हाँ जी।
1: वो जालिम समझा,
2: हाँ जी।
1: ये पाप है मेरा,
2: हाँ जी।
1: बस मुझको घेरा,
2: हाँ जी।
1: फिर पुलिस आई,
2: हाँ जी।
1: दी लाख दुहाई,
2: हाँ जी।
1: वो एक न माना,
2: हाँ जी।
1: पड़ गया ले जाना,
2: हाँ जी।
1: सोचा ले जाकर,
2: हाँ जी।
1: फेंकूंगा बाहर,
2: हाँ जी।
1: सौ जतन लगाया,
2: हाँ जी।
1: कोई काम न आया,
2: हाँ जी।
1: सड़कों पर बेचा,
2: हाँ जी।
1: गाड़ी में फेंका,
2: हाँ जी।
1: बन गया ये बंदा,
2: हाँ जी।
1: इस गले का फंदा,
2: हाँ जी।
1: मैं फिर भी टाला,
2: हाँ जी।
1: कचरे में डाला,
2: हाँ जी।
1: फिर बारिश आई,
2: हाँ जी।
1: अंधियारी छाई,
2: हाँ जी।
1: बिजली जब कड़की,
2: हाँ जी।
1: मेरी छाती धड़की,
2: हाँ जी।
1: एक तीर लगा,
2: हाँ जी।
1: मैं वापस

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
5: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
6: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
7: सैंडी शाह कंटिन्यूज विद लंदन्स बिगेस्ट बॉलीवुड क्लासिक्स.
8: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: 50376.
1: The big bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
3: Goal Drive with Sandy Shah.
4: Oh yeah!
5: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे।

0: brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: झूठ बोला सैंडी शाह ने झूठ बोला
3: ऑन गोल्ड ड्राइव।
4: आई हैव इंडीड एंड थैंक यू वेरी मच इंडीड टू एवरीबॉडी हु हैज गॉट इन टच सो फार, वेरी काइंड ऑफ यू विद योर आंसर्स एंड अ कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस एज़ वेल व्हाई यू बिलीव वन इज द लायन द अदर नॉट। इट्स ऑलवेज गुड। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ फाइनल रिमाइंडर टू डू दिस बिकॉज़ इट्स द लास्ट चांस एंड आफ्टर दिस ऑब्वियसली आई विल ट्राई एंड गेट एज़ मच म्यूजिक एज़ आई कैन अप टू द एंड ऑफ द आवर एंड आई विल ऑब्वियसली टेल यू व्हिच वन व्हिच फैक्ट और which statement I actually lied about. So here's your last chance. So, two statements are, your heart beats about 100,000 times in a single day. B, the Amazon River is the only major river on Earth that flows north towards the Arctic. One of them is a complete lie. You just need to tell me which one it is.
3: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
4: And moving on, who doesn't love a bit of Sonu Nigam? We all do. But there are some of his songs that came out way before he became huge and took over the planet. He almost has. And I've got a lot of those songs that I remembered. I think he sung that so well. I want to play you a song which was never in the film. The Alka Yagnik version is. His version isn't, but I have to be honest, his version is far superior. Film ka naam tha Najayz. I'm sure you all remember this. Ajay Devgan ki film thi. Had some very good songs, but this one was not in the film. But Sonu Nigam at his best on this. Enjoy.
3: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
5: मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।

0: लाइफ विद सैंडी शाह, ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
3: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
4: The wait is finally over.
5: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
4: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
7: Abe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
4: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 3 days to go. Mirzapur the movie releasing in cinemas September 4th.
6: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Adil ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।

0: This is Sandy Shah on Gold Drive. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And a pound's picking up 128.34 Indian rupees, 88.58 Afghan Afghani, 375.02 Pakistani rupees, 165.82 Bangladeshi taka, and 443.34 Sri Lankan rupees.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold trading at £103.60 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: जाग जाओ दुनिया में आ जाओ
4: लो कल से आ गई मैं तो दुनिया अभी वो जो गाना था ना लड़ाई थी ये झूठी तो मुझे ना तुम्हारा अपना ख्याल आ रहा था कि वैसे हम झूठी मूठी लड़ाइयां करते रहते हैं लेकिन दिल में बहुत प्यार है
1: अगर किसी को शक था कि अनीसा आई है या नहीं आई मैं सबूत दे रहा हूँ आ गई
4: आ गई है वो मुझसे मांग रहा था सबूत चाहत का सुन सुन सुन वो मुझसे मांग रहा था सबूत चाहत का मैं उसको आधी चाय ना देती तो और क्या करती हाँ मुझे पता सर क्यों बंदर से गुजर गया
1: बंदर की जाने अदरक का स्वाद
4: देखो खुद को खुद ही बंदर कह रहा खुद को खुद ही बंदर
1: अपने मुंह तारीफ करनी ज्यादा अच्छी लग रही है
4: तारीफ
1: सो अनीसा जी टेल मी इन वन सेंटेंस हाउ वाज यस्टरडे फॉर यू योर फर्स्ट डे बैक
4: अमेजिंग अमेजिंग पहले घंटे में लगा कि मतलब मैं नमी आई हूं सोना फिर उसके बाद दो घंटों में तो मतलब मुझे लगा कि मैं कहीं गई थी क्या
1: तो मैं कार ही नहीं हूं जाना
4: नहीं मतलब मैं कहीं गई थी इतना अपनाइत इतना प्यार मिला सबसे को बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा सबका शुक्रिया सबके नाम मेंशन नहीं कर पाई तो आज कोशिश करूंगी
1: Very glad you're happy and you're back. So, Ye Yavoji.
4: Hanji.
1: So, the first, they're both duets, Mohammed Rafi Saab and Lata Mangeshkar. First one is from Maya, Tasveer Teri Dil Mein. Second one is Mujhe Kitna Pyar Hai from Dil Tera Diwana. Which one gets

0: expected between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. And be aware that in Stratford, we've got the game tonight at London Stadium, so delays to be expected. Kickoff is at 7:45, so just bear that in mind. I'm Brooke Laurie, and that's your very latest traffic and travel.
1: My beans have been to Mexico. They once went to Peru. My beans, they flew to Portugal, then went to Tuvalu. My beans were with me in Italy, then came with me to Greece. I slurped their sauce on Spanish shores. I nibbled them in Nice. My Heinz beans have seen the world. They've traveled far and wide because they are, as we all know, too good to leave behind.
2: Okay, let me stop you there, sir. You still have to check them into the hold.
1: Oh, all right then. Honestly.
3: Beans means Heinz.
4: Like our gold.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
6: पल भर के लिए
7: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए. संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 25 pounds. बुक टिकट्स एट heroartcentre.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203773 7161. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network.

0: क्या जरूरी है मेरे हाथ में कासा होना जो भिखारियों के हाथ में होता है, बैगर्स के हाथ में। अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। क्या जरूरी है मेरे हाथ में कासा होना, तुझको दिखता ही नहीं है मेरा प्यासा होना। खुद पसंदी की भी हद होती है महबूब मेरे, अपने आप को चाहने की, अपने आप को सराहने की, अपने आप को बहुत कुछ समझने की, खुद पसंदी की भी हद होती है महबूब मेरे। दो अलग चीजें हैं, खुद होना और खुदा सा होना। लो जी, आ गए हम और आप भी आज ये मैदान में, बल्कि आ चुके हैं और बहुत सारे लोग बूझने की कोशिशों में लगे कि गीतों में आज क्या कॉमन है, कुछ गलत और कुछ सही जवाब बात मुझ तक पहुंचे हैं। आपका दिली खैर मकदम है इस प्रोग्राम में पूरे 10 बजे तक आपका और मेरा बहुत ही रंगीला, तड़पीला, फड़कीला किस्म का साथ रहने वाला है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128.1 Indian rupees. और याद रहे कि exchange में branch, exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile ऐप के जरिए आप ये सहूलत जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Anisa Nasir with The Big Show.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: लंदन जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन लंदन। बॉलीवुड एक्टर आफताब शिव दसानी, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिखा और सोलफुल सिंगर मयूरी पटालिया लाइव हैरो में। Saturday, 3rd October, 7 PM, Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: The wait is finally over.
5: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
4: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
7: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
4: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 3 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
6: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
0: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
9: अपना बनाया तेनू,
0: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 0793913726। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड।
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
12: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
13: Asian Achievers Awards Friday September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner Leica Radio Greater London.
14: Leica Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइका गोल्ड .com पे
15: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: उसी इश्क से, उसी चाह से, उसी प्यार से, उसी मान से मुझे आज फिर से मिलो ना तुम। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ। लीजिए मिल तो रही हूँ खावर जी, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट अ स्टाइल हाँ वेलकम करने का, नवाजिश करम, शुक्रिया मेहरबानी। और कम तो हमारे कमल शिवनानी जी भी नहीं हैं, कहते हैं जालिम कितनी देर लगा दी तुमने आते आते, अब आए हो अब ना आते तो हम जान से जाते, दिल दीवाना दीवाने को कैसे हम समझाते, देते राम दुहाई, दुहाई है दुहाई है। बेहद शुक्रिया। और सुनीता जी कह रही है मैं सो रही थी और देख लें आपके टाइम, यानी कि जहन में आते ही कि आपके शो का टाइम है, आपके आने का टाइम है, मैं उठ गई प्रोग्राम सुनने के लिए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और जहाँ तक थीम का ताल्लुक है, सब साफ सबसे पहले हमें सही जवाब भिजवाया है विजय गुरूरी जी आपने, दीनी जी, अंजुम जी, चौधरी फरीद अहमद जी, सैम शहजाद, नंबर एंडिंग विद 458, प्लीज़ अपना नाम लिखा करें। दिनेश पोपट जी आपके जवाब आज सही है, फरजाना जी, तोची जी, रुखसाना जी, ओम प्रकाश लाल जी, अब क्या कहूँ मैं, ओम प्रकाश जी जैसे आपकी पत्नी का नाम ना लेकर अब मैं सिर्फ आपका नाम लेकर आपको कपल कहूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बस कुछ ऐसा ही चक्कर है गीतों में भी। सुनीता जी, ताहिर जी, संध्या भावसर जी, प्रीति जी बेल्जियम से, कुलबीर सिंह जी आपका भी जवाब गलत है। और कुलबीर सिंह जी आप कह रहे थे मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, वो कौन है मुझे बताएं, मैं कुछ जुगाड़ बिठाने की लगाने की कोशिश कर सकती हूँ।
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड Feel Good Classics with Anissa Nasir.

0: What a song. ये खालीपन ये अजियत के दिन गुजर जाएं, ये खालीपन ये अजियत के दिन गुजर जाएं, तू लौट आ के मुसीबत के दिन गुजर जाएं। ना तेज भाग मेरी जिंदगी जरा सा ठहर, ना तेज भाग मेरी जिंदगी जरा सा ठहर, गले लगा कि ये वहशत के दिन गुजर जाएं। वन एंड ओनली मुकेश जी, क्या गीत है भाई और क्या जवाब है भाई। कमल शिवनानी जी कहते हैं, दूर से पूछोगे तो हाल अच्छा ही बताएंगे, कभी पास आकर देखोगे तो सारे राज खुल जाएंगे। वेल डन, जवाब बिल्कुल सही है। और क्या स्टाइल है जवाब देने का। रीटा जी आपका भी जवाब सही है। बहुत सारे मैसेजेस और भी हैं, लेकिन जरा मैं सांस ले लूं।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: My beans have been to Mexico. They once went to Peru. My beans, they flew to Portugal, then went to Tuvalu. My beans were with me in Italy, then came with me to Greece. I slurped their sauce on Spanish shores. I nibbled them in Nice. My Heinz beans have seen the world. They've traveled far and wide because they are, as we all know, too good to leave behind.
4: Okay, let me stop you there, sir. You still have to check them into the hold.
3: Oh, all right then. Honestly.
5: Beans means Heinz.
2: This is Anissa Nasir with The Big Show.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com।
8: Dubai is coming to London.
9: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
8: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
9: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
8: Hurry and register now
9: at nknpropertyexpo.com.
8: Your next investment could begin here.
9: Official Radio Partner, Leica Radio.
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
11: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
10: ये तो बताओ, कोई पता चला?
11: गुरु गुरु,
12: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
10: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र।
12: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
14: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: सितंबर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
2: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो।
3: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगवानू बंद करो।
1: कॉमेडी किंग निमेशा अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो।
4: Winter is coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
6: The Big Bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.
7: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइका गोल्ड.

0: Pure Radio Network, across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapko dila sakta 128.3 Indian rupees, 88.9 Afghan Afghani, 374.7 Pakistani rupees, 165.6 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LEICA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is currently trading at £103.60 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: और भी लीजिए अब लगे हाथों कुछ मैसेजेस जो हैं वो और शामिल कर लिए जाएं कुछ नाम जिनमें एक बहुत ही प्यारा सा नाम है आपका और आप हैं आप कहाँ चले गए आप इधर ही थे और किमी पटेल जी भरत गंगाराम जी ज्योति ग्रीशा जी तारिक राहील जी रुखसाना अफजल जी कमला जी जिन्हें मैं कमली भी कहती हूँ जगजीत जी और मंजीत संगर जी मुकेश जी बेहद शुक्रिया आपके नाम में मेंशन नहीं कर पाई थी उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ और जहाँ तक सही जवाब बात का ताल्लुक है हमारी आज की थीम को लेकर तो कमल शिवनानी जी के बाद रीटा जी अमिता जी मोहम्मद अयूब चौहान जी और निलेश जी आपके जवाब बिल्कुल सही हैं गलत जो भी जवाब दे रहे हैं आप यकीन करें वो कपल्स की जानिब से गलत जवाब आ रहे हैं जबकि कपल पर पेयर पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो आज होनी चाहिए थी जैसे कि हमारी निर्मल और किरित जी गीता हर्षद जोशी जी रजनीश जी गुरसरन जी जी आपके जवाब गलत हैं वीना जी जवाब तो आपका भी सही नहीं है और उल्लास जी आपके लिए भी सेम सेम नहीं शेम शेम नहीं कह रही फिर क्या हुआ मुझे खुद नहीं कई बार पता होता बल्कि अभी अभी आपके मैसेजेस से मुझे अंदाजा हुआ है कि हो हाय आज तो फरमाइशी दिन भी है गा
0: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर

0: और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दूर जाने से मोहब्बत बढ़ती है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो दूर जाने से भी कभी घटती नहीं है। इस बात को तो मैं मानती हूँ और इस बात को आपने एक नहीं, दो नहीं, कई बार साबित किया। अब कुछ लोग तो बराबर मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, 3 महीने का कहकर गई थी, 4 महीने और 14 दिन के बाद लौटी हैं। व्हाट्सअप तो अल्लाह भला ही करे, जरा तुम एक गिनती करके दसते ना सारे नु, तो मी एंड माई बिग माउथ, मेरे को भी रहा नहीं गया, मैं दस दिता इसे चक्कर च कि भी व्हाट्सअप का मैथ किन्ना चंगा। चलो हूँ भुगतो, नहीं मतलब मैं भुगतानी। मनजीत संगर जी, रानी जी सलाव से और उमर जी दुबई से, आपके जवाब बात बिल्कुल सही है, वेल डन। बता दूं अभी बता दूं? नहीं, मेरा ख्याल थोड़ा सा इंतजार करते हैं।
1: Anisa Nasir with the big show, weeknights from 7 PM. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply. This Diwali.

0: डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
1: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
1: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
3: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
1: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me.
7: Southall Travel, at all protected. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashood Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
7: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
7: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network. Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV, powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
8: Hi, this is Arbaaz Khan. For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
9: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM.
10: जिस्म से आ जाती है, दिल को गर्माती है, जज्बात को भड़काती है।

0: सकता, पिघल जाएगा। हर वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा और गुजर रहा है बड़ी तेजी के साथ। लीजिए पास और दूर कॉमन रहा आज गीतों में, और उल्लास जी, निर्मल जी, गीतार्षा जोशी जी, रजनीश जी और बहुत सारे लोग नहीं बूझ पाए, लेकिन इस ओके प्रोग्राम के अगले दौर में मजीद गपशप जारी।
1: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।
0: बहुत प्यारा शेर एक भिजवाया है तारिक राहिल जी ने, यहाँ कभी कोई आया नहीं मगर सरे शाम, बस एक गुमान से दरवाजा मस्त रहता है। क्या बात है तारिक साहब, छा गए आप। गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू निशा नाज़ ऑन लाइक अ गोल्ड।

0: कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हमें भी कहना है और आपको भी, हमें भी सुनना है और आपको सुनवाना है और आपने भी सुनाना है। खरी खरी के अलावा कुछ भी सुनाइए। अब क्या ही बात है, पूरन कपूर जी की कहते हैं, अनीसा इज दैट यू? ऑफ कोर्स इट इज मी। कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, कहाँ गई थी आप? मिस्ड योर लॉट। कपूर जी हैम्बर्ग जर्मनी से मेरे रेगुलर लिसनर, बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि चाहे रहें दूर चाहे रहें पास, एक दूसरे को अच्छे अल्फाज में याद करें और दिलों के पास रखें। ये हदें ना तोड़ देना, मेरे दायरे में रहना, मुझे अपने दिल में रखना, मेरे हाफजे में रहना, मेरे मंजरों में बसना, मेरी गुफ्तगू में होना, मेरे लम्स में समाना और मेरे जायके में रहना।
1: Feel good classics all day. Like a gold. Competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.1 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch online ya phir SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और लीजिए अब आ जाते हैं उल्टे पुल्टे की जानेब। चंद अल्फाज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और आपने पूछना है कि ये कौन सा गीत है। अपनी तकदीर, वफा कम, अपनी तकदीर वफा कम, यादों के सहारे है, पूछ लिया। अपनी तकदीर वफा कम, यादों के सहारे, कौन सा गीत है प्यारे?
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Mel, something huge has landed.
3: The UFOs, it's all over the news.
2: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
3: I think that's why the aliens are here too.
2: I do now, gotta go.
4: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale-event.
1: Anisa Nasir, live across Greater London with The Big Show. Like a gold.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। Backstage Siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek Sham Soulful Music, Devotion aur Energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
7: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
2: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
4: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
5: 4 days to go. The NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network.
6: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
5: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lo ji, dher lag gaye farmaishon pe farmaishen. Aur kya pyare pyare geet aapne maange hain. Right, ye geet to bahut hi pyara geet. Kiske naam karein? मीना जी आपके नाम कर दें। इतना प्यारा मैसेज भिजवाए, इतने प्यारे अल्फाज। तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, यूं बार बार जो आंखों को मल के देखते हैं। जुदाइयां तो मुकद्दर हैं, फिर भी जाने सफर कुछ और दूर जरा साथ चल के देखते।
0: ये है लाइका गोल्ड।
2: लो जी, हॉलीडे की बात मुझे कहा गया है तो मैं मेंशन कर रही हूँ, वरना मुझे तो हॉलीडे का नाम लेना भी मना है। साउथ ऑल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टेक्ट साउथ ऑल ट्रेवल आज ही कर लीजिएगा ऑन 0208574 8410। साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Making summer feel better. This is Leica Gold.
2: लीजिए, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ अपने आज के उल्टे पुल्टे के चंद अल्फाज को। अपनी तकदीर, वफा कम, यादों के सहारे। और अब तक जो जवाब आते मुझ तक पहुंचे उनमें राजा ऑफ दी आवर हैं कमल शिवनानी जी। कमल अहमद जी, आपका जवाब भी सही है। प्रीति जी बेल्जियम से जीत गई आप भी, फिर क्या हुआ अगर थर्ड नंबर पे आई तो। अनिल जी, उल्लास जी टोरंटो से, उमर जी दुबई से, कुलबीर सिंह जी अपने घर से, विजय गडोरी जी थैंक यू वेरी मच। देखो इसको कहते हैं मोहब्बत, मतलब फुटबॉल चल रहा है, म्यूट किया हुआ है और सुन रहे हैं इन प्यारे प्यारे गीतों को। क्या बात है, बल्कि क्या ही बात है। और वो जो मुझे बहुत सारी फरमाइशें गज़ल की भिजवा रहे हैं उनको बता दें कि बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं गज़ल स्टेशन, प्योर गज़ल स्टेशन। आपको इतनी प्यारी प्यारी गज़ल सुनने को मिलने वाली हैं कि पूछो ही मत।
0: ये है Leica Gold.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: बल्ले बल्ले हो रही है लाइका गोल्ड पर।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 374.7 Pakistani rupees, 88.5 Afghan Afghani, 128.3 Indian rupees, 165.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £103.60 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और मैं सोच रही हूँ कि काश काश काश मैं आप लोगों के बिछाए हुए मैसेजेस का एक एक लफ्ज जो है वो ऑन एयर कर सकती, लेकिन फिर आप ही में से कोई लोग कहेंगे हाय हाय कितनी प्राउडन होगी ये, मैं प्राउडन नहीं हो रही, ये आप मुझे प्राउडन बनाने की कोशिशों में लगे हैं। वैसे सारी ज़िंदगी लंघ गई, थोड़ी सेवा कर दें, खिदमत कर दें, अज तक तो कोई गुरूर आया नहीं, तो हूँ की आएगा दसो तुसी। बस आपके प्यार को पाकर बस कभी दिल भर आता है तो कभी आके। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच गुल जी, तुसी ना हो तो गुल खिलदे ही नहीं। दिया जी कैंट से, डॉक्टर शाह जी क्या बात है, बेहद शुक्रिया। असद तालिब जी, नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। और लीजिए जल्दी से बढ़ते हैं उस गीत की जाने, मतलब गीत तो अभी नहीं सुनवा रही, अभी तो पंजाबी तड़के का टाइम है, लेकिन उल्टे पुल्टे की जानिब कहूँ, जिसे तारिक राहिल जी आपने भी सही तरह से बड़ा ठीक ठाक किस्म का बूझ लिया। और रानी जी सलाव से, आप तो फिर हैं ही माशाल्लाह से बड़ी सियानी, रानी बड़ी सियानी। और तारिक राहिल जी आपने जिक्र किया है पाकिस्तानी आइडल का, तो पाकिस्तान आइडल जो है वाकया उसकी एंडिंग है, हीरा कैसर जी ने ये मुकाबला जीता है। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बहुत सारा टैलेंट सामने आया, और जीतना तो किसी एक ही को होता है ना, और फिर वही बात, जिसका फेवरेट कंटेस्टेंट जीत गया वो खुश, उसकी बल्ले बल्ले, और जिसका नहीं जीता वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
2: Like a gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK. Punjabi Tadka with Anisa.
0: और सुनीता जी मैं ताड़ा की करा, मेरा मतलब मैं आपका क्या करूँ, कभी कोई डिश तो कभी कोई डिश, तस्वीरें भिजवा रही हैं मुझसे, कह रही हैं कि ज़रा नाम तो बताइए, कोई बिहारी डिश है तो कोई अनारी डिश है तो कोई खोमारी डिश है, अब आप ही बताओ मैं शक्ल से कैसे पहचानूँ। हाँ, खा कर पहचान सकती हूँ, कब भिजवा रही हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो, अनीसा नासिर वेरी मच हाज़िर टिल 10 o'clock। हो जाए धमाल, दमादम, मस्त कलंदर।

0: This is Anisa Nasi with The Big Show. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: नो नीड टू फ्लाई बैक होम. This summer holiday, come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow.

0: Don't miss it.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
3: Anissa Nasir with the big show, weeknights from 7 p.m.

0: क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि हर रोज मिलें हम दोनों। हम जहां गांव बसाएं वहां एक झील भी हो। क्या जरूरी है मोहब्बत तेरी तकमील भी हो। ये था हमारा आज का उल्टा पुल्टा, जिसे नीलेश जी आपने भी सीधा कर दिया था। बेहद शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने बूझा, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने नहीं बूझा। जहीर खान जी ऑल द वे फ्रॉम कराची मैसेज भिजवाने के लिए बेहद शुक्रिया, और गीतों की पसंदीदगी के लिए भी। ख़ास तौर पर धमाल आपको बहुत भाई बहुत पसंद आई। नवाजिश करम शुक्रिया, मेहरबानी। इसी तरह साथ निभाते रहिए। प्रोग्राम के आखिरी घंटे में कुछ फरमाइशें पूरी हो सकेंगी, टाइम भी और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी की वजह से भी। तो सुनते रहिएगा, साथ निभाइएगा।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड नॉन स्टॉप क्लासिक्स।
0: और ये क्लासिक हमें ले चला है न्यूज की जाने। ये लाइक अ गोल्ड है। गुड इवनिंग।

0: हजारों लाखों करोड़ों बार सुनने पर भी जो गीत नए ही मालूम हो और लगे कि अभी अभी पहली बार सुना है और कानों के रास्ते दिल में उतर गया है, ऐसे ही गीत आप तक पहुंचाता है आपका अपना लायका गोल्ड 24/7। तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम, तेरे चेहरे के ये सादा से अछूते से नक़ूश मेरे तख़य्युल को क्या रंग अता करते हैं। तेरी ज़ुल्फ़ें, तेरी आँखें, तेरे आरस, तेरे होंठ कैसी अनजानी सी मासूम ख़ता करते हैं। और ये दोनों गीत थैंक्स टू जनाब फरुख जी और सुषमा जी, मुझे सुनते और सुनवाते हुए ख्याल आया, ये जो मैं कभी आंखें छोटी करके और बड़ी करके स्क्रीन पर मैसेजेस पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं ग्लासेस क्यों नहीं निकाल लेती अपने रीडिंग वाले, लेकिन वो क्या ना कि अभी नई नई बूढ़ी हुई हूँ, मेरा मतलब है करीब की नज़र कमज़ोर हो गई है, बुढ़ापा तो नहीं मान रही लेकिन नज़र तो आपको पता है जवानों की भी कमज़ोर हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत सी एक चीज़ भिजवाई थी जनाब चौधरी फरीद अहमद साहब ने, डॉक्टर फ़खर अब्बास की कही और उनका हमने कल जिक्र किया। और उस्मा जी हम कैसे जिक्र नहीं करते, कल जैसे ही सोशल मीडिया पर गए हैं, कोई भी पेज खोल लो आप, इंस्टा पे जाओ आप, फेसबुक पे जाओ, हर कोई अफसरदा था, हर कोई गमनाक था, हर कोई परेशान था उनके अचानक से इस दुनिया से जाने पर। बहुत ही प्यारा इंसान और बहुत ही प्यारा शायर जनाब फ़खर अब्बास साहब, और जो आपने उनका कलाम भिजवाया है फरीद जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसे प्रोग्राम में शामिल कर पाऊँ।
1: This is Anisa Nasir on Like a Gold, Greater London. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you 128.1 Indian rupees, and don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे आंखें छोटी बड़ी करके मतलब हैं ही छोटी छोटी, उनको कभी और छोटा करना पड़ता है और कभी यूं करके फैला के पढ़ना पड़ रहा है, तो मुझे वो कबूल है यार, ये ग्लासेस ने तो मेरा सर चकरा दिया।
1: Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Hello?
3: Mel, something huge has landed.
2: The UFOs, it's all over the news.
3: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
2: I think that's why the aliens are here too.
3: I do now. Gotta go.
4: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale-event.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show.
5: Like a gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स your travel mantra.
7: Dubai is coming to London.
8: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
7: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
8: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
7: Hurry and register now
8: at nknpropertyexpo.com.
7: Your next investment could begin here.
8: Official Radio Partner, Leica Radio.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
9: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
10: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Leica Radio Network.
12: Calling all samosa lovers! Leica Radio and Ashoka Samosa celebrating World Samosa Day in style. Listen from Monday and all week for your chance to win a £50 Amazon gift voucher. Keep listening, get ready to enter and celebrate World Samosa Day with Ashoka Samosa and Leica Radio.
13: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
14: Artist of the week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: वन एंड ओनली माला सिन्हा जी पर पिक्चर आए ये गीत हमने लिया था फिल्म आसरा से, और क्या ही खूबसूरत गीत है। और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बार आपको ये सुनवाती हूँ क्योंकि मेरे भी दिल के करीब है और मेरे सुनने वालों के भी, आप तो जानते ही हैं हमारे और आपके दिलों के बीच मोटरवे है। जागी आँखों के ख्वाब होते हैं भाई, जागी आँखों के ख्वाब होते हैं और कुछ ताल्लुक अजाब होते हैं। कुछ मसाइल का मसला ये है हल करो तो खराब होते हैं। माला सिन्हा जी के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगी, हद से ज़्यादा टैलेंटेड और खूबसूरती की हर हद से ज़्यादा खूबसूरत माला सिन्हा जी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लाइका गोल्ड और भी मेरे साथ एग्री करने के लिए बेहद शुक्रिया. बहुत सारे मेरे लिसनर्स कह रहे हैं टोटली एग्री विद यू. माला सिन्हा जी वाकई बेहद खूबसूरत है माशाल्लाह से. लीजिए दोस्तों एक इवेंट का जिक्र करते चलें. आतिफ असलम जी आप जानते हैं अभी पिछले दिनों भी यहाँ लंदन में परफॉर्म करके गए हैं. एन अवार्ड मार्वलस जिसको कहना चाहिए उनकी वो परफॉर्मेंस थी और मुझे तो हमेशा याद रहेगी एब्सोल्युटली मैजिकल. और आतिफ असलम जी वापस आ रहे हैं यूके फॉर स्पेशल वन ऑफ कॉन्सर्ट एट एओ अरीना मैनचेस्टर ऑन फ्राइडे 11 सितंबर. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर जो हैं वो हैं लाइका रेडियो.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of ye yavo only on Laika Gold.
4: Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.
5: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम.
6: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम.
7: पल भर के लिए
8: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Laika Radio Network.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable support. Supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
12: ये तो बताओ कोई पता चला?
13: गुरु गुरु
14: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
12: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
15: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
16: Exclusive radio partner Laika Radio Network.
17: The Big Bank is loading and ready tomorrow. Stay tuned.

0: घर से तुम्हारी दी हुई चीजें निकाल दी। फरीद अहमद जी ने भिजवाया है जनाब डॉक्टर फखर अब्बास जी का कहा कलाम। घर से तुम्हारी दी हुई चीजें निकाल दी, जैसे खुद अपने जिस्म से सांसें निकाल दी। देखा बस एक दफा उसे मैंने करीब से, देखा बस एक दफा उसे मैंने करीब से, फिर अहले शहर ने मेरी आंखें निकाल दी। हैरत है, उसने कैद भी खुद ही किया मुझे, फिर खुद मेरे फरार की राहें निकाल दी। कुछ उसने भी सहेलियों के मुंह से सुन लिया, कुछ मेरे दोस्तों ने भी बातें निकाल दी। एक पल में खत्म हो गई उम्र तवील भी, जब जिंदगी से हिजर की रातें निकाल दी। जाने वो किसके वास्ते लिखी गई है दोस्त, मैंने मुसव्वदे से जो नज़्में निकाल दी। वाह क्या बात है। वैसे ये पसंद तो थी दिव्या जी आपकी, लेकिन मैं इसे डेफिनेटली विजय गुरूरी जी के नाम जरूर करूंगी, क्योंकि वैजयंती माला जी उनकी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस हैं और हमेशा रहेंगी। और उससे पहले जो गीत आपने सुना था, मैं समटाइम्स नाम मेंशन नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ आप तो सुन ही रहे ना, आपको पता ही है कि आपकी पसंद है, तो वो रुखसाना अफजल जी ने सुनना चाहा था। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, मिलते रहिएगा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 374.8 Pakistani rupees, 128.3 Indian rupees, 88.5 Afghan Afghani, 165.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £103.60 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: और बहुत माजरत चाहती हूँ अंसर महमूद जी आपसे, क्योंकि आपकी पसंद का गीत आज शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन लेकिन लेकिन फ्रॉम लॉलीवुड विद लव में जनाब मेहती हसन साहब की आवाज़ में जो गीत मैं शामिल करने जा रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है बल्कि पूरा यकीन है कि आपकी पसंद के मैार पर खरा उतरेगा।
4: ये है
5: लाइका गोल्ड
1: फ्रॉम लॉलीवुड विद लव With Anissa.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: nights. Like a gold on 10:35 AM.
1: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 344, a 24-hour line.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
10: जो कर्ज ने हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा तथास्तु
7: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जन मीडिया 826 EE396
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
11: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
12: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदाबहार

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: The Buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties The Buy has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963